0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: Good evening, hello and welcome. You're with the news today. This is your primetime destination news, newsmakers, talking points. Our big talking point tonight, the pellet row is getting bigger by the day. Should there be a judicial probe into who ordered the pellet gun shooting on the protesters on July 20th? Today, pellet victim Irshad Mansoori will join me in the studio. He speaks out. We'll tell you his story. Also, former Supreme Court Judge Madan Lokur tells us whether it's time for an independent judicial inquiry. And on a positive side, the Commonwealth Games Paralympian hero Sharmila Dhankar is among my special guests tonight. But let's get cracking as always. But the big story, a day after the Lok Sabha debated the pellet gun issue, today we've seen a showdown in the Rajya Sabha over the public exam reforms bill. The government is expected to pass the bill shortly in the Rajya Sabha. The opposition has staged a walkout demanding Home Minister Amit Shah come to the house and give a statement. The bill all set to therefore pass the Rajya Sabha test as well. The opposition accuses the Home Minister for being behind the police firing that took place on the 20th of July. So clearly, it is a day after Rahul Gandhi demanded the Home Minister's resignation over the pellet gun firing. The opposition keeping the heat on the Home Minister, with Mallikarjun Kharge leading the attack along with other opposition leaders, even as the government insists that the opposition has really no case. Take a look at the report.
2: The pellet gun row continues to echo in Parliament. After a fierce face-off in the Lok Sabha, the Congress raised the issue in the Rajya Sabha as well.
3: Lathi charge karane ke liye, aansu gas karne ke liye, chhodne ke liye, pellet gun ke istemal ka aadesh kisne diya? Is pure ghatna karm ka sarvoch sutradhar kon the? Desh in sawalon ka jawab chahta hai. अगर गृहमंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए. अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए.
4: ये है पैलेट गन.
2: राहुल गांधी, who has mounted a sharp attack on the government, had earlier met protesters allegedly injured by pellet guns.
5: पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे. इनका फिजिकल डैमेज हुआ है. मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी.
2: राहुल गांधी हैज ब्लेम्ड होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर द ब्रुटैलिटी अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स. द गवर्नमेंट हिट बैक एट गांधी.
6: Every single child who has been beaten must know this. That this is the man, take a good look at him. This is the man who is responsible for what happened to you. Of course, he takes his orders from the Prime Minister, but this is the man who beat you, who thrashed you, he humiliated you, who shot you with pellet guns.
7: सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई भी नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है.
2: Amid the political slugfest, CRPF chief Gyanendra Pratap Singh has come out in support of his troops.
8: चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हो, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हो, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है।
2: Meanwhile, the Supreme Court observed that the use of such force is permitted under police rules only in exceptional circumstances and directed the Delhi police to place on record the standing order governing its use. With the use of force now under judicial scrutiny, it remains to be seen who will ultimately be held accountable for the alleged use of pellet guns. With Piyush Mishra, Amit Bhardwaj and Rahul Gautam, Bureau Report, India Today.
1: And while the pellet gun controversy continues to reverberate in and outside Parliament, I'm joined by a very special guest. My first guest today is Irshad Mansoori. He is a 25-year-old who suffered severe pellet injuries to his face and neck during the protest last week in central Delhi. Irshad, first of all, thank you very much for coming on the show. I know it's not easy. You've just recovered from being in hospital for several days. How are you, first of all?
4: Yeah, I'm like feeling quite better than earlier, so I can like make conversation here.
1: And you had injuries where? To your
4: in my like upper body, major injuries on my face, including like eyes, nose, and like forehead, and some pellets are on my skulls. And like after that, after the face, I have some pellets on my like neck and my right shoulder.
1: And doctor ne kya kaha? These are pellet injuries with some metallic or plastic. What was it?
4: They used like those pellets are like rubberic and with metallic.
1: So there's rubber but with a metallic.
4: Yeah.
1: And they've removed all of that. So how many days were you in hospital?
4: I was there like more than 4 days.
1: You were 4 days in hospital. Now, I want to understand what happened on July 20th. You chose to go to the protest. Explain the events. First of all, why did you choose to go to the protest? Kyon gaya?
4: Because I just want to raise my voice with my younger sister, my younger brother and the youth.
1: So that's why I was. You went out of solidarity. It was the first time you were going there to Jantar Mantar or?
4: Yeah, it was my second time.
1: Second time during these protests.
4: Yeah.
1: What happened on 20th?
4: So basically, according to the CJI, the timing was like 9 a.m. I have to be there at 9 a.m. with like the constitution book or I can carry...
1: The CJP, the Kokhru Janta Party said 9 a.m. wahan pahunch jao.
4: Haan.
1: Okay.
4: And like, meko kuch cheeze carry karni thi. Not sari cheeze, but I can carry at least one. Main rose carry kar sakta tha ya fir tiranga le sakta tha apne saath mein ya fir constitutional book jo hamari hai, sambidhan hamara hai, usko hum saath mein leke protest site pe hum ja sakte the.
1: So you went there around 9 a.m.?
4: Yeah, I was there at 9 in front of Kerala Bhavan.
1: Right.
4: So like from 9 a.m. to 11:10, I was there in front of Kerala Bhavan. And like after the 11:10, mere paas kuch appointments the, mere personal work ke liye. So I was there. So the appointment jo start hona tha, 12:30 se start hona tha. So like 12:30 to 3:30, I was there at my appointment. And then again, main aaya. And like मैं राजीव चौक के मतलब राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की हेल्प से जंतर मंतर की साइड जा रहा था. सो आई सो कि मतलब बहुत सारे लोग पीछे तरफ आ रहे हैं. सो मैं मतलब मेरा मेन मोटिव था कि जानना कि क्या अभी करंट सिचुएशन है, क्या हाल चल रहा है, कि अब गवर्नमेंट ने वो चीज़ सुनी है नहीं सुनी है. सो आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स लाइक जंतर मंतर. एंड जब मैं जंतर मंतर की साइड जा रहा था तो मैंने देखा कि अचानक से कुछ लोग इकट्ठा पीछे तरफ दौड़े. तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ लाठी चार्ज कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स एंड कुछ आरएएफ के जवान थे जो कि लाठी चार्ज कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे कुछ लाइक जो पैलेट सॉरी जो टीयर गैसेस के ग्रेनेड्स थे वो भी सेम टाइम पे लॉन्च हुए. एंड मैं भी कुछ लाइक दो से तीन जो टीयर गैसेस हैं उनके चपेट में आया. तो मेरे भी आईज में इरीटेशन हुआ, मेरे स्किन पर थोड़ा इरीटेशन हुआ. तो मैं भी लाइक इनर सर्कल की साइड जा रहा था. सो जब हम सब लाइक पुलिस वाले भी हमें पीछे ढकेल रहे थे और जो भी प्रोटेस्टर थे कोई भी लाठी ऑब्वियसली नहीं खाना चाहेगा. सो हम सब पीछे की तरफ जा रहे थे. एंड हमने देखा कि वहाँ पे जो डाइवर्जन है जो कि लाइक वेज को डिवाइड करता है टू डिफरेंट पार्ट्स में, सो वहाँ पे होल्ड कर लिया था पुलिस ऑफिसर्स ने एंड आरएएफ के जवान जो भी थे उन्होंने. सो जब देखा प्रोटेस्टर्स ने एंड लाइक जो भी यंगस्टर्स थे, हम अपने हाथों को उठा के हम लाइक बढ़ रहे थे कि वी आर हियर फॉर पीस, हम कोई वॉयलेंट क्रिएट करने के लिए नहीं आए हैं, हम किसी भी लाइक मार या इस टाइप की चीज़ के लिए नहीं आए. जो हमारे मुद्दे हैं, जो हम चेंजेस लाना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में, हम उन चीज़ों के लिए आए हैं. सो उतने में मैंने देखा कि एक ब्लू ड्रेस आरएएफ के जवान थे, उन्होंने अपने गन को ऐसे लाइक इन दिस लाइक दिस पोजिशन उन्होंने फो आर्म किया एंड उसके 10 सेकेंड के बाद मैंने एक फायर का साउंड सुना एंड तुरंत फिर मेरे जो आईब्रो है आईब्रो के कॉर्नर पे एक कुछ बुलेट टाइप कुछ कारतूस टाइप हिट किया एंड हिट करने के बाद उसके अलग अलग पीसेस में आई डोंट नो क्या हुआ वो मेरे चेहरे की स्किन को पेनिट्रेट करके स्किन के अंदर चले गए एंड देन मेरे पास सेकेंड हिट आया उसी जो भी कारतूस था उसका सेकेंड हिट मेरे चिन के बॉटम पे राइट बॉटम पे यहाँ पे पड़ा एंड देन अगेन कुछ हिस्से उसके जो पार्टिकल्स थे वो मेरे थ्रू नेक एंड शोल्डर मेरे स्किन के अंदर पेनिट्रेट हुए एंड सडन बेसिस में मेरा काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो गया.
9: And you left the place or you collapsed or what?
4: So on that time I was conscious but I was not like able to think what can I do, how can I stop my bleedings. So मतलब जो आसपास के students थे जो मेरे से भी young थे उन्होंने देखा कि काफ़ी सारा blood यहाँ पे निकल रहा है. So उनके हाथ में जो भी कपड़े थे वो through कपड़े उन्होंने try किया कि वो कैसे भी करके उस bleeding को stop कर सकें. सो वो आए और उनका कपड़ा जो था उन्होंने अपने मतलब मेरे चेहरे पे कंधे पे नेक पे रखने का ट्राई किया एंड दे ट्राई टू लाइक स्टॉप द ब्लीडिंग एंड कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा होल्ड भी हुआ ब्लीडिंग. एंड मेरे मन में भी चल रहा था कि मैंने जस्ट 5 से 6 दिन पहले ही ब्लड को डोनेट किया है, अगर ज़्यादा ब्लड लाइक इसमें निकल गया तो इट कैन हार्म माई बॉडी, काफ़ी कुछ हो सकता है. तो उसके बाद फिर अर्जेंट बेसिस में वहाँ पर एक व्हीकल जा रहा था दैट वाज स्कूटी. सो विद द हेल्प ऑफ दैट स्कूटी दे लाइक एडमिटेड मी ऑन लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल एट इमरजेंसी वार्ड.
9: द स्टूडेंट्स टुक यू देयर और दोज ऑन द स्कूटी, दोज हु आर ऑन द स्कूटी टुक यू टू द हॉस्पिटल?
4: देयर वाज वन स्टूडेंट, एक पर्सन था जो स्कूटी राइड कर रहा था एंड
9: टुक यू देयर.
4: हाँ, एक और स्टूडेंट था उसने मेरे को होल्ड करके ले जा रहा.
9: At what distance were the policemen when they fired at you, the RAF? What distance?
4: It
9: 10 was, meters, 20 meters, 50
4: yeah,
9: meters?
4: It was something like 50 meters.
9: 50 meters from you?
4: Yeah.
9: They fired at... you were unarmed. Yeah. You had of course not...
4: मेरे दोनों हाथ खाली थे. मेरे पीछे एक बैग था जिसमें मेरे एक लैपटॉप था, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे.
9: And nobody around you was resorting to violence? आपने कोई...
4: नहीं.
9: There was no stone pelting, nothing going on when you were there. Right?
4: Nothing.
9: At that moment, this is important, at that moment when those pellet guns... were fired, there was no violence going on, right?
4: Yeah.
9: In fact, the mob was being pushed back. The students were being pushed back at that
4: yes.
9: moment when this happened. What do you do? You are employed?
4: Yeah, I'm an employee of a corporate company.
9: You're an employee of a corporate company. So, I mean, here is an employee of a corporate company going in solidarity with the young protesters, suddenly finding himself in this situation. You've spent 4 days in hospital. You've now gone to court. Along with the police officer calling for a ban on pellet guns.
4: Yeah.
9: ये अपनी मर्जी से किया है या किसी ने दबाव का नहीं इरशाद चलो. You are not associated with any political party. Nothing.
4: I'm not like associated with any single political party. I'm doing everything from my individuality.
9: So what made you decide कि अब I want to go to court?
4: Because जब मैंने ये चीज़ें लाइक मेरे को इसके पहले पैलेट्स के बारे में नहीं पता, पैलेट गन के बारे में नहीं था पता था. जब मेरी ये सर्जरी हुई उसके बाद मेरे को कुछ टाइम मिला तो मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़े कि हाउ इट वर्क्स या कैसे क्या होता है क्यों होता है क्या. तो उसके बाद मेरे को पता चला कि ये 2010 के बाद से नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर यूज़ करना अलाउड नहीं था बट मेरे ऊपर ये यूज़ किया गया एंड लाइक ये यूज़ किया गया और इसमें मेरा तो चलो कुछ भी नहीं हुआ. आई एम लाइक सेव अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, देयर इज़ नो डेंजर इन माई बॉडी. बट एक और विक्टिम है हुज़ नेम इज़ साहिल लोचब.
9: Yes.
4: वो भी काफ़ी सीरियस सिचुएशन,
9: he's got a serious eye injury.
4: Yeah. So मैंने देखा कि ये काफ़ी कुछ हार्म कर सकता है अगर ये लाइक ह्यूमन के ऊपर यूज़ किया जाए. दैट्स वाई आई फिगर आउट कि मैं कैसे मतलब मैं छोटा सा भी कंट्रीब्यूट कैसे करके उस चीज के ऊपर एक एक्शन ले सकता.
9: सो यू वांट अ टोटल बैन इन अ वे ऑन पैलेट गन्स. आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हेन द दिल्ली पुलिस सेड, उन्होंने न्यूज़ दे नो पैलेट गन्स वर यूज्ड, उन्होंने स्टेटमेंट की थी ऑन I remember soon after a story broke on that. What do you say? What will you tell the Delhi police today?
4: I don't have any like words or any answer. What can I say? But sabko pata hai ye cheez ki wo use hua tha. I was the real victim of that pellet gun or pellet bomb.
9: Are you today angry? Are you, how do you feel today when you wake up or go to sleep at night or wake up in the morning? How do you feel? Angry, gussa aa raha hai? Because as you said, you were totally peaceful, unarmed. You went to this protest. How do you feel? As you have every right as any constitutional citizen. You are a citizen of this country. How do you feel today? Do you want to see change in the system?
4: Yeah, I'm not angry, but I'm

0: These Mahindra cars were bought for the BMC corporators this year. After just 6 months, the councillors are seeking an upgrade. They don't find the ride in these cars comfortable enough and complain of back pain. So the BMC has now drafted a proposal to buy 6 Innova cars at the cost of 1.5 crore rupees. But now that the news is public, nobody is owning up.
1: सर्वांनी मिळून आम्ही मागणी केली होती की आताच्या जी वाहनं आम्हाला दिलेली आहेत या गाड्या बदलण्यात याव्या याविषयी तक्रार होती आणि त्या पद्धतीने प्रशासनाकडे आम्ही गटनेत्यांच्या बैठकीतही आम्ही मागणी केली होती. त्यानुसार आताच्या ज्या गाड्या आहेत या बदलून नवीन क्रिस्टा गाड्या घ्याव्यात असा माझ्या माहितीप्रमाणे प्रस्ताव येतोय. आम्ही मागणी केली होती की आमच्या गाड्या बदला.
2: लीडर ऑफ अपोजिशन की इतने ये काम करने लगे मैं इसमें ही उनके बातों में ही वो फेल है. मैंने कभी नहीं कहा क्योंकि जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो मेरी 10 साल मेरे पास मैंने वो यूज की है. मुझे कभी भी स्कॉर्पियो से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है.
0: The BMC proposal is to buy 6 cars to be allotted to the Deputy Mayor, Leader of the House, Leader of the Opposition and Chairpersons of the Standing Improvement and Education Committees. The proposal for the new vehicles will soon be submitted to Municipal Commissioner Ashwini Bhide for approval. A BMC official said that the existing cars will be given to BMC ward officers.
3: Nobody in the elected body is taking responsibility for this proposal. Now the real question is whether taxpayers' money should be used for the people or for providing better comfort to the elected representatives. If new cars have been just acquired 6 months back, then what's the harm in using them? With camera Sanmanda Chavan Mustafa Sheikh for India Today.
4: Okay, let's turn now to our Good News Today story. And for our Good News Today story, I'm joined by a very special guest who I spoke to earlier today, Sharmila Dhankar, who's won the para shot put at the Paralympics event at the Commonwealth Games in Glasgow. India's first gold there in Paralympics at the CWG in 20 years. And for Sharmila, it comes after years of struggle. She contracted polio at the age of 2. At the age of 26, her husband abandoned her after years of alleged domestic abuse, and she later married Ajit, who encouraged her to pursue para-athletics. In 2023, she had to even sell a house to fund her training. But Sharmila did not give up on her dreams, and she is joining us straight from Glasgow, hamari special guest, Sharmila Dhankar. Pehle pehle, namaskar. Aaj aap hamari khas mehman hain. आपने जो किया है बहुत बहुत बधाई. बहुत बड़ी जीत है. 20 साल बाद भारत को एक गोल्ड दिलाना पैरालंपिक ओलंपिया कॉमनवेल्थ गेम में बहुत बड़ी बात होती है. कॉन्ग्रेचुलेशंस.
5: बहुत खुशी हो रही थी सर. हमारे देश का तिरंगा लेके पोडियम में थे. हमारे देश के लिए मेडल आया और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ और उनकी इंतजार था कि मेडल आए. मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई.
4: आपको खुशी तो हुई होगी पर आपने जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं. आपके खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज हुआ व्हेन यू वर जस्ट 19. यू वर मैरिड ऑफ. शादी हुई. आप और आपकी बेटी को घर से निकाला गया. देन यू हैड अ सेकंड मैरिज एंड योर हस्बैंड लुक्ड आफ्टर यू और उन्होंने आपको मैंने सुना है शॉर्टपुट करने के लिए प्रोत्साहित किया. ये कहानी बताइए कितनी मुश्किलें हुई यहां तक पहुंचने के लिए. व्हेन यू रीच दैट पोडियम बहुत लंबा सफर रहा है आपके लिए
5: सर. बहुत ही मुश्किल हुई है. ये लगता है कि किसी सुरंग में छोड़ दिया. एक लाइन है बस अंधेरा है सब जगह. कहाँ जाना है ये नहीं पता. बस रास्ते का पता है सीधे चलते रहो. बहुत अंधेरे से गुजरी हूँ सर. बहुत कठिनाई आई है.
4: टर्निंग पॉइंट क्या थी आपकी जिंदगी में शर्मिला जी जब आपको लगा यार ठीक कई कठिनाई हो गई लेकिन मेरी जिंदगी का एक मकसद है. मैं चाहती हूं कि मैं शॉटपट चैंपियन बनूं देश का नाम रोशन करूं. कोई टर्निंग पॉइंट थी आपकी जिंदगी में मैम?
5: सर मैंने ठान ली थी कि जिद भी बन गई थी मेरी कि अब इस गेम में आ गई तो अब पीछे नहीं हटूंगी. कितना भी परिस्थिति हमारे सामने आए मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी और एक ना एक दिन तो मेडल हासिल करना है. ये तो सर कॉमनवेल्थ का है. आने वाले टाइम में ओलंपिक में भी मेडल लाना है मुझे.
4: और किसने इस लंबे सफर में आपका साथ दिया? कितने लोगों ने आपकी मदद की? क्या कोई खास व्यक्ति है जिसको आज आज आप थैंक्स कहना चाहेंगी जिसकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुंची हैं?
5: इसमें सर मेरी माँ का फुल सपोर्ट है शुरू से लेकर, मेरे हस्बैंड का और मेरे कोच का, ट्रेनर का, हमारी पीसी का, साई का, सरकार का, ये भी एक फैमिली की तरह हमें ट्रीट करते हैं सर, बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के लिए। देखो इन्होंने तो कोई परेशानियां नहीं दी, पहले जो आ गई सो आ गई, अब परेशानियां नहीं आई जब वर्ल्ड चैंपियन के बाद भी गेम में आई हूँ जब से।
4: ये बताइए शर्मिला जी, ये थोड़ा गूगली क्वेश्चन है, क्या खास बात है हरियाणा में? हरियाणा में मैं देखता हूँ स्पोर्ट्स में, खास करके महिलाएं हो पुरुष हो, खास करके महिलाएं कुश्ती में, अब शॉटपुट में, आप लोग बड़े ताकतवर होते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, कुछ तो होगा हरियाणा की मिट्टी में, नीरज चोपड़ा से लेकर शर्मिला धनकर तक?
5: सर कुछ तो है ही, क्या ताकत है हरियाणा की मिट्टी में, दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, दूध दही में है ताकत सर, देसी खाना।
4: दूध दही का खाना है मेरा हरियाणा, और ये भी है कि शॉटपट तो करना आसान नहीं है, मैं तो नहीं कर पाता, पर इस स्पोर्ट में भारत ने कई ऊंचाइयां पहले भी एशियन गेम्स में की है, कितना मेहनत लगता है एक शॉटपुट चैंपियन बनने के लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको?
5: सर 6 साल की मेहनत है जो आज यहाँ तक पहुंची हूँ मैं, और ये मेहनत भी बहुत स्ट्रगल बहुत जबरदस्त रहा है कि 7 से 8 घंटे डेली प्रैक्टिस करना, हर चीज का त्याग करना, बड़े सिर्फ गेम पे फोकस करना, खुशियां त्यागना, रिश्तेदारियों में आना जाना त्याग करना, घर में कोई खुशी मनाना त्यागना, सब कुछ त्याग करके सर यहाँ तक पहुंचे।
4: ये आपने बहुत बहुत सैक्रिफाइस किए हैं, कोई चैंपियन ऐसे नहीं बनता। एक आखिरी बात, ये मेडल है कहाँ? ये जो मेडल आपने जीता आपके पास है, कहाँ रखा है? दिखाइए दुनिया को आपका मेडल, ये कहाँ आपके बेड पर है, कहाँ है मेडल रूम में? मैम मेडल
5: रखा है सर मेरे पास।
4: अच्छा आपके पास रखा है, दिखाइए। हाँ हाँ मेडल जरूर दिखाइए मैडम, मेडल के बगैर कैसे चलेगा? अरे वाह शर्मिला धनकर जी, अरे लवली नाइस शर्मिला जी, ये आपका मेडल है, आपने जैसे मैंने कहा देश का नाम रोशन किया, थैंक यू वेरी मच शर्मिला जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बहुत बधाई, इसी तरह से आप एक तरह से प्रेरणा बनते रहिए, एंड यू आर अ रियल मॉडल फॉर मेनी मेनी पीपल, थैंक यू।
5: मेरे तक के नीचे रहता है सर मेडल।
4: अच्छा
5: मैं अपने पास रखती हूँ।
4: अच्छा आप मेडल अपने पास रखती है, कहाँ? तकिया के नीचे। अरे लवली ओके शर्मिला धनकर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो एंड लाइटिंग अप ऑल आवर लाइफ, पुटिंग द स्माइल बैक ऑन व्हाट्स अदरवाइज बीन डिप्रेसिंग टाइम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुडे। दे आर द रियल फ्यूचर इन अ वे ऑफ स्पोर्टिंग इंडिया। ट्रिमेंडस रिमार्केबल स्टोरी देयर ऑफ शर्मिला धनकर। दैट्स ऑल दैट वी कुड पैक इन ऑन द न्यूज टुडे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग द न्यूज विदाउट द नॉइस।
6: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Bueno, ESPN Radio.
7: How they looked after game one.
8: I mean, they were frustrated.
6: The Daily.
9: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
6: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.

0: paper leaks, reaching out to the youth directly himself.
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो,

0: राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है।
1: परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आपबीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो के जरिए हम उस दिन और उसके आगे चलते हुए कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ क्या कुछ हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वो वीडियो जो हमने बनाई है वो सोशल मीडिया की कुछ वीडियोस से, और जिन लोगों को घायल जो पुलिस कर्मी हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद वो वीडियो हमने बनाई है। प्लीज एक आपके समक्ष में वो वीडियो रखना चाहती हूँ।
2: प्रदर्शनकारियों से कई बार बातचीत की कोशिश की गई थी तथा उन्हें अवगत कराया गया था कि नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 प्रभाव में, जिसमें 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। ये सूचना मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की गई थी। इसके बावजूद ऑर्गेनाइजर्स द्वारा लोगों को जंतर मंतर पहुँचने तथा संसद मार्च के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेरित किया है। इसको ध्यान में रखते हुए तारीख 20 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस स्टाफ की ब्रीफिंग करके जगह जगह पर भारी संख्या में तैनाती और अलग अलग रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। इसमें विभिन्न सीनियर रैंक के ऑफिसर्स एवं महिला स्टाफ की भी तैनाती की गई थी। 20 तारीख की सुबह होते ही संसद मार्च के लिए भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों के पास संसद मार्च की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में नारेबाजी के साथ अपना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यही भीड़ संसद की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में हर जंक्शन और हर सड़क पर पुलिस बल पहले से ही तैनात था, जो लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहा था कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। भीड़ बैरिकेड तोड़कर पटेल चौक की तरफ बढ़ने लगी, जहां रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन भीड़ ने इन बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। कई बार पुलिस ने बैरिकेड्स को दोबारा लगाया, लेकिन उग्र भीड़ ने उन्हें फिर से तोड़ दिया और हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे भीड़ का स्वरूप उपद्रवी होना शुरू हो गया और भीड़ जोरदार नारेबाजी के साथ साथ पुलिस पर बोतलें, जूते और पत्थर भी फेंके जा रहे। पुलिस की कोशिश थी कि हालातों को काबू में रखा जाए और बार बार प्रदर्शनकारियों से अपील की गई। कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया और पटेल चौक पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए संसद भवन की तरफ पुलिस ने बैरिकेड को फिर से खींचकर भीड़ से अपील की कि वो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन भीड़ भारी पथराव के साथ बैरिकेड को तोड़ती हुई हाई

और की दौर में पहुंच गए और उनकी दूरी संसद से महज 50 मीटर की रह गई। ये देखकर पुलिस अधिकारियों ने बार बार उग्र भीड़ को चेतावनी दी कि सभी बैरिकेड के पीछे रहे। बैरिकेड को पार करने की कोशिश की गई तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन भीड़ पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस द्वारा अत्यंत संयम बरतने के बावजूद अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए और उन्हें संसद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए नॉन लीथल टीयर गैस का इस्तेमाल करने पर बाध्य हो सकता और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीबल का प्रयोग करना। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई और भीड़ की तरफ से लगातार पथराव हो गया। इसके बाद जब भीड़ का एक हिस्सा कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में पहुंचा तो वहां भी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और भारी पथराव किया। इससे इलाके में जान माल के खतरे की स्थिति बन गई। ऐसी विषम परिस्थिति में वहां भी भीड़ को काबू करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज का प्रयोग करना। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उग्र भीड़ के द्वारा पथराव एवं घेरकर मारपीट के कारण 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें सिपाही से लेकर अत्यंत वरिष्ठ रैंक तक के अधिकारी शामिल थे। काबू करने का प्रयास जारी रखा तथा स्थिति को नियंत्रण में किया।

0: what the.
1: एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। अब मैं आपके सामने कुंजल जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
2: हेलो, माय नेम इज कुंजल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डीयू। माय फादर इज असाइन दिल्ली पुलिस। मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले इंडियन, मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरिन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिगेट्स, जहां पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM। He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमें, हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वर्कशॉप करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी, हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा।
1: सीमा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस पे ASI हैं। वो 33 साल की, जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए ASI के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था, वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो है वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ ये ही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को रात को जब वो 11:30 ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जब तक वे घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर बैरिकेड, जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जो पुलिस कर्मी है और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज के लिए जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाए जाएं, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ हो रही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। थैंक यू।
0: थैंक यू। थैंक यू सीमा। हाँ लक्ष्य आप बताएंगे कुछ।
3: हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा ACP है जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर BSF में थे, उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फिन के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था. जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है, मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें डाउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस. एंड ऑन 25th में अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी. उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे. एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई.
0: कुंजल आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे?
2: मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है. जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतने सारी सीरियस इंजरीज ली हैं. और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है. उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के बारे में स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है. उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है. थैंक यू.
0: लक्ष्य आप कंटिन्यू करना चाहेंगे?
3: मैं जब भी ऑनलाइन जाता हूँ एंड जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज्यादा लाइक डेरोगेटरी टर्म से बात करी जाती है, लाइक उनके एकदम खिलाफ होते हैं. हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता. मेरे पापा बोलते हैं कि इस पे मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए बिकॉज ये बस दोनों साइड को ट्रिगर करने के लिए, ये वन साइड मीडिया है एंड ये बस केओस क्रिएट करने के लिए. पर जब मेरे फादर के साथ ये हुआ आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड. और एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या. एंड फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसर्स थे उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है. मैंने और बहुत सारी फैमिलीज ने पुलिस की, उन्होंने भी मिलकर प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज राइट टू लाइफ. मेरे फादर यहाँ पे नहीं है बिकॉज ड्यू टू हिज रूल्स ऑफ ड्यूटी और बट हम यहाँ पे टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज जिनके स्पाउस है जिनके फादर इंजर हुए. जंतर मंतर एक में जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए. मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे. एंड माई फादर डिडंट डिजर्व दिस. थैंक यू.
4: So you heard there from the family members of the policemen who were in fact a victim of what happened as far as the protest in Delhi city is concerned. And we're putting out these videos for you as well, images that speak volumes of how the Delhi police too was at the receiving end of protesters. And it is clear many of them were not students. This is what the family members have said, that we too are the people who were beaten up, a policeman, not just policemen, they also, in fact, humans, and also the fact that the family had to go through a lot given the manner in which the policemen were beaten up and were targeted for simply doing their duty. Policemen have families too, and we were at the receiving end of this, is what the family members of the Delhi police officers have now said in a brief press conference that you just saw on your screens and heard just a few moments ago. They can say that their loved ones, their fathers, were beaten by those members in the protester, among the protesters who were there to only create ruckus, and they were violent. They were beating up the policemen, and that they were rowdy elements from within the students. The relatives of Delhi policemen, they're holding a press briefing in which they detail on the kind of ordeal that they also went through as a family. Images that are put up are of the manner in which Delhi policemen there has been geared out. Pictures are from Delhi's Connaught Place, is clear, where the Delhi police were also, in fact, geared out by these protesters and then beaten up. I'm going straight to Arvind Oja for more on that story. Arvind, jis tarike se parivar walon ne ye bataya hai ki police walon ke saath bhi bahut hi naainsafi hui, yahan par unko mara gaya, peeta gaya, ye baat Supreme Court ne bhi kahi thi. Aur ye, in fact, ye jo sare problems hue the, iske bare mein sarkar ne bhi baatcheet ki thi ki Delhi police ko kai had tak target kiya gaya tha in protest mein.
5: अब बिल्कुल देखिए, जो आज जो ये पुलिस फैमिली है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी डिटेलिंग दी. जाहिर सी बात है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें भीड़ पुलिस वालों को घेर कर लिंच करने की कोशिश कर रही थी, तो पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन पुलिस फैमिली की तरफ से दिया गया, जिसमें एक ACP जिनको घेर कर पीटा गया था, उनकी वाइफ थी, एक इंस्पेक्टर जिसको घेर कर पीटा गया था, उनके फैमिली के लोग थे, और उन्होंने बताया कि किस तरह से भीड़ ने टारगेट किया पुलिस को, उन पुलिस पर्सनल को जो ड्यूटी कर रहे थे, जो आम लोगों की सिक्योरिटी के लिए दिल्ली की सड़कों पर होते हैं, उनको भीड़ ने टारगेट किया घेर कर, और जिसमें 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं. बताया फैमिली ने कि किस तरह से पुलिस वालों का इंतजार उनके भी परिवार के लोग करते हैं. पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन एक भीड़ थी जो एक प्लान के तहत आती है और पुलिस को टारगेट करती है. तो कहीं ना कहीं 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ दिल्ली की सड़कों पर गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि देखिए BNS की धारा 163 नई दिल्ली इलाके में लगी थी, और ऐसे में पार्लियामेंट चल रहा था, और ऐसे में दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती थी कि जो सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की कम से कम और नई दिल्ली इलाके की वो की जाए. लोगों के जान माल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस की थी, लेकिन भीड़ की हालत थी कि वो पार्लियामेंट के 50 मीटर दूर तक पहुंच गई थी. अगर सोचिए, अगर और आगे बढ़ती तो क्या हालत होता. जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में तैनात CISF के जवान थे वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर चले गए थे. तो परिवार ने दरअसल, चूंकि पुलिस की फैमिली है, उनका कहना है कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी आम लोगों की तरह हैं, हमारे भी सिविलियन राइट्स हैं, उसका क्या. तो और सबसे बड़ी बात कि ये भी उसमें ये कहा गया कि जिन लोगों ने पुलिस पर अटैक किया या जो प्रोटेस्टर थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो एक अपने आप में दुख वाली बात है. तो कहीं ना कहीं जो ड्यूटी पर तैनात थे, 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, उनको घेर करके लिंच किया गया, उस पर सवाल उठाया है, और साथ ही साथ उठाया है कि ये कोई स्टूडेंट नहीं हो सकते जो पुलिस पर इस तरह से अटैक कर रहे हैं.
4: जी बिल्कुल. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स आल्सो सेड दैट her father, in fact, a police officer, came back home and clearly said that these aren't students and that they are criminals who are, in fact, beating up policemen. Bane rahiye hamare saath, Arvind Oja, with the very latest on that story. We'll just hear once again from the kin of the Delhi policemen who were addressing a press conference just a few moments ago. Listen in.
1: Jantar Mantar ke protest ke dauran, unhe bhi apni duties di gayi thi. Protest ko उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था, वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे. जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी, और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
2: माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स। रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माई फादर वॉज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लिंच नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM। ही वॉज अनकॉन्शियस एट द RML हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 आवर्स। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
4: अरविंद इस विदास। अरविंद ये बताइए कि ये पुलिस, दिल्ली पुलिस के परिवार वालों का और क्या कहना है? कोई लीगल ऑप्शन, कोई केस अगर वो रजिस्टर कर पाए, क्योंकि यहाँ पर वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी सफर कर रहे थे लेकिन हमारी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। सब प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं कि वो अग्रीव्ड है। दिल्ली पुलिस ने अत्याचार किया लेकिन दिल्ली पुलिस के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके बारे में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है।
5: देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि पुलिस के पास ये अधिकार है। पुलिस को जो वेपन मिले हैं या जो कुछ भी मिला है, लाठी मिली है, ये उनका अधिकार है और वो अगर उनको ये राइट है कि अगर उनको लगता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ती दिख रही है तो वो हर चीज, हर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं SOP के मुताबिक, और फिर उनकी जवाबदेही कोर्ट को होती है। अगर जो SOP है स्नेहा, उसमें यही है कि अगर क्राउड बहुत ज्यादा है और अगर वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहा है तो पहले आपका वाटर कैनन का इस्तेमाल करिए, फिर टीयर गैस की सेल छोड़िए, उसके बाद आप लाठी चार्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्रावधान में ये भी है कि रबर गन और बाकी सारी ये चीजें हैं वो चला सकते हैं। बहुत ज्यादा जब कानून व्यवस्था कोई सिक्योरिटी थ्रेट में हो जाता है तो फिर आप जानती हैं उसके बाद भी पुलिस के पास किस तरह के वेपन होते हैं। तो ये SOP का पार्ट है और अगर पुलिस इस तरह का कोई भी वेपन इस्तेमाल करती है तो फिर ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में पुलिस जवाब दे देती है। तो अगर लाठी चार्ज पुलिस कर रही है तो वो उनका अधिकार है, उनका राइट है। वो लाठी इसीलिए सरकार ने उनको दी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से पुलिस ने हैंडल किया था उन चीजों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब पुलिस के परिवार के लोग सामने आए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है 250 लोगों को अटैक किया गया जिसमें कुछ तो काफी सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक ACP है उनको किसी तरह से एक DCP रैंक के ऑफिसर ने बचाया था, एक इंस्पेक्टर थे उनको तो चारों तरफ से घेर कर भीड़ ने मारा था जिसका वीडियो भी इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है। और कल सुप्रीम कोर्ट में ने भी साफ साफ कह दिया कि आप पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाने से पहले उनको प्रॉपर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं वो आप उनको मुहैया कराएं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस पर सवाल उठाने से पहले सोचे, जितना प्रोटेस्टर का राइट्स है उतना पुलिस का भी राइट्स है। तो ये सारे इश्यूज को लेकर जो पुलिस, जो इंजर्ड पुलिस के फैमिली के लोग हैं उन्होंने इस चीज को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के परिवार वाले भी उनका इंतजार करते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको एड्रेस किया गया और साथ ही साथ वीडियो प्रेजेंटेशन भी इस परिवार के लोगों ने दिया कि किस तरह से पुलिस वालों को घेर घेर कर मारा गया, जो प्रोटेस्टर थे उनके हाथ में पत्थर थे। तो ये सारी खुलासे दिल्ली पुलिस के परिवार के लोगों ने, ACP की फैमिली ने, इंस्पेक्टर की फैमिली ने मीडिया के सामने रखे हैं।
4: शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अरविंद ओझा विद द वेरी लेटेस्ट ऑन दैट स्टोरी, टॉकिंग टू अस अबाउट द मैनर इन विच मेंबर्स ऑफ द दिल्ली पुलिस, इन फैक्ट द फैमिली मेंबर्स ऑफ द दिल्ली पुलिस हैव रेज्ड देयर कंसर्न्स रिगार्डिंग व्हाट हैपेंड लास्ट वीक एंड इवन बिफोर दैट ऑन द 20th of July स्टार्टिंग इन दिल्लीज जंतर मंतर वेयर द दिल्ली पुलिस टू वॉज एट द रिसीविंग एंड द फैमिली मेंबर्स से दैट वी टू आर ह्यूमंस, दे टू हैव फैमिलीज एंड दैट एंड नरेटिंग ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्डेल they had to go through during this entire period when Delhi police was also systematically targeted by protesters. We will continue to get you more on that story. For the moment, we're pausing for a quick break. We are going to be coming back live with details from what's happening inside Parliament. Remember, in just some time from now, the House will resume. In about 15 minutes from now, the monsoon session of Parliament, with both Houses resuming in just a few minutes.

0: that antisocial elements were allegedly planted by the BJP and RSS to cause trouble, adding that the government should compensate all those affected.
1: जनता मंदिर में जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, हर्ट करने के लिए. मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे. एंड माय फादर डिडंट डिजर्व दिस.
2: पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है. जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतने सारे सीरियस इंजरीज ली हैं. आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है. उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के बारे में स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है. उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है.
3: मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ, मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है. ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ हो रही है. जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी, प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था, वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे. जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था. जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते.
2: माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड. रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं. उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर. दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM. ही वाज अनकॉन्शियस एट द RML हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 आवर्स. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी. वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी.
4: जिनको चोट लगी है गलत बात है, उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सरकार को भी उनको फ्री का ट्रीटमेंट देना चाहिए. एंड वायलेंस का कहीं जगह नहीं है किसी भी प्रोटेस्ट में, हमारे आंदोलन में भी नहीं है. कुछ असामाजिक तत्व बीजेपी आरएसएस के थ्रू घुसाए गए थे हमारे प्रोटेस्ट में जिन्होंने ये सारा प्रॉब्लम किया कुछ कुछ जगहों में वायलेंस करके. लेकिन उनको भी मैं बोलूंगा कि गेट वेल सून. हमारे भी जो प्रोटेस्टर्स है वो उनको भी बोलूंगा गेट वेल सून. ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए. सरकार को मुआवजा देना चाहिए ऐसे सारे प्रोटेस्टर्स को एंड ऐसे सारे पुलिस कर्मियों जो घायल हुए इनके वजह से.
0: When India Today questioned Rahul Gandhi on the families of injured police personnel briefing the media, the leader of the opposition seemed irked and retorted, "Are you from the BJP? We're getting you this full interaction."
5: राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

0: बीजेपी के हो गया?
1: नहीं बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार बार बीजेपी का बोलने का क्या मतलब है सर?
2: तरीका नहीं
1: है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे। राहुल जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए,
0: बीजेपी के हो गया?
1: नहीं बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार बार बीजेपी का बोलने का क्या मतलब है सर?
2: तरीका नहीं
1: है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे।
3: Take this back to my colleague Piyush Mishra, who's now joining us live on the broadcast. Piyush, I apologize for the last time that I interrupted you, but fair point, as we watched that entire sequence, you were doing your job, you were asking questions, you have been presenting both sides of the story, and as much as we have been questioning why police excesses were used against the students, also to question that the cops were equally injured and there were antisocial elements part of that protest, then why is the LOP not wanting to answer this?
4: Well, absolutely, Sushan. Remember that more than 118 cops were injured, and it is very important to raise their voice also, to raise the kind of concerns so that being raised by the family members of these victim police personnel. And that's what we tried to ask from Rahul Gandhi. Why? Because the family members are now requesting all parliamentarians to raise the attacks on police personnel too. And when we asked this question from Rahul Gandhi, he asked me, are you from BJP? But the point here is that whenever any question which Rahul Gandhi finds uncomfortable, he always dodges in the similar fashion. He says, are you from BJP? Or is this a BJP question? Or have you been planted by BJP? So this has become evident. That's why today we were forced, along with other journalists from news agencies, they were forced to ask Rahul Gandhi. This has become your habit. How can you every time dot question by saying, are you from BJP? Or this question has been planted by the BJP. But the point here is that, yes, the lathi charge happened. And yes, a large number of students were injured. But at the same time, even police personnel were injured. We heard what the family members were telling us. A police person was so injured that he is still admitted in hospital. And that's what the family members are raising. But it seems like Rahul Gandhi does not want to raise their concerns. And that's why he not only dodged the question first time, but when he was leaving from the parliament, I again tried to ask him. He kept mum and left from the parliament without answering.
3: All right. And that shows that bias, Piyush. We'll leave it at that. Also cutting across to this live news conference.
5: क्लियरली बताऊं, हमारे भी बच्चे हैं, बिल्कुल डेमोक्रेटिक सेटअप है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, बिल्कुल प्रदर्शन होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? हमने देखे हैं, पता नहीं कितने हजारों प्रदर्शन हमने देखे होंगे, लेकिन जब एक क्राउड कंट्रोल, पांचवी बात मैं कहना चाहता हूं कि क्राउड कंट्रोल एक अलग चीज है, वो आसानी से हो जाती है, लेकिन मॉब फ्रेंजी जब चार्ज होता है एटमोस्फियर, जब अनलॉफुल असेंबली हो जाती है, एक एक मेंबर उसका रिस्पॉन्सिबल है। कानून की भाषा में कितने भी बड़े एक्सपर्ट लॉ के सुन रहे हो मेरी बात को, एवरी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली इज एन अक्यूज। एंड चौथी बात कि भाई आप जो अगर मॉब फ्रेंजी हो गई, आप प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आपने 163 की वार्निंग को कुछ नहीं समझा, आपको बोला कि मजमा खिलाफ कानून आपका डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आपने ये किया। तो फिर पुलिस के पास क्या साधन है? या तो पार्लियामेंट में उनको घुसने देते तो इससे ज्यादा बड़ी घटना घटती, इससे बड़ी घटना घटती, गोली चलानी ही पड़ती। और वो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में अगर पुलिस अफसर की जान को खतरा है, प्रोपोर्शनेट थ्रेट है, तो वो कोई भी एक्शन वाजिब होगा, मौके पे लेगा। वहां पर ना गवर्नर साहब, ना सीएम, ना होम मिनिस्टर, मौके का सीनियर ऑफिसर या मौके का अफसर उसको डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी जान और पब्लिक की जान और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे पार्लियामेंटेरियन है, उनको कैसे बचाना है। इससे बड़ी अराजकता क्या होती कि अगर लोग पार्लियामेंट में घुस जाते, हमारे पूरे इंटरनेशनली हमको एक फीलिंग, शेम की फीलिंग आती कि साहब क्या हमारे भारतवर्ष की पुलिस सक्षम नहीं है। तो अगली बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि भी जो भी सिस्टम होता है, जहां पर कमिश्नर सिस्टम है वहां पर मौके का अधिकारी हुक्म देता है, चाहे टियर गैस चलानी हो, चाहे वो पैलेट गन चलानी हो, चाहे वो डंडा चलाना हो, लाठी चार्ज करना हो। तो लेकिन ये जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है वहां पर डीएम और एसडीएम को बुलाते हैं, वो हुक्म देता है। मैं क्लैरिटी दे दूं आपको, लेकिन जहां कमिश्नर सिस्टम है दिल्ली है, यहां पर ऑन द स्पॉट हमारी लाइफ में और इबेद भूषण एसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट रहे, कम से कम हमने सैकड़ों प्रदर्शन अटेंड किए हैं, आज तक कोई कंप्लेंट किसी ने नहीं करी कि भाई हमारे साथ ये गलत हुआ है। हाँ, कोलेट्रल डैमेजेस जरूर हो जाते हैं, कोलेट्रल डैमेजेस जरूर हो जाते हैं, ऐसे में होए थे। चाहे किसी भी प्रदर्शन में आप लीजिए, किसी भी प्रदर्शन में आपने अटेंड किया वो हो सकते हैं। अगली बात, हम अपने पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके परिवार के साथ है, उनके साथ है, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हम यहाँ आज उनके खड़े हैं, ताकि उनको लगे कि हमारे साथ हैं, और हमारे जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी तकलीफ हुई है, हमें भी पेन हुआ है जब हमने देखी है पुलिसकर्मियों की हालत। हमें बच्चों के भी, स्टूडेंट को भी इंजर्ड हुए हैं, मीडिया पर्सन भी इंजर्ड हुए हैं, सभी को देख के दुख हुआ है, लेकिन हमारी सहानुभूति हमें रोका नहीं गया कि हम अपनी सॉलिडरिटी को यहाँ एक्सप्रेस करें। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जितना कि एक आम जनता के लिए, सिटीजन के लिए, उतना ही पुलिस अधिकारी के लिए भी है। हाँ, और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे मॉब फ्रेंजी में जहां पर जान का खतरा बना हुआ, लिंचिंग हो रही हो, वहां पर ट्रेनिंग, एसओपी, वहां पर बाकी की सारी चीजें मौके के अफसर को नहीं याद आती, क्योंकि सबसे पहला काम उसको जान बचाना होता है। लेकिन फिर भी 128 कर्मियों के घायल होने का मतलब इट स्पीक्स इन वॉल्यूम कि रेस्ट्रेंट पुलिस ने दिखाया है। अगर एजिटेटर्स को चोटें आई हैं, जो मेरी सहानुभूति है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे इस उम्र के हैं, जनजी के उम्र के हैं, उनके भी ख्यालात हमसे डिफरेंट है और हम बिल्कुल इस बात से गुरेज नहीं करते, लेकिन हमें किसने मारा? 128 पुलिस कर्मियों को किसने मारा? अगर हमने उनको मारा तो हमें किसने मारा? ये बात का जवाब हमें चाहिए। कि इसलिए हम बहुत संतुष्ट हैं सरकार की जो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, बहुत ही संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट ने जो बहुत ही बैलेंसिंग जजमेंट दिया है, उस पर हमें कुछ भी नहीं कहना है। और मैं आपको आखिर में मेरी सहानुभूति है जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन भी डेमोन्स्ट्रेटर्स को, जो इनोसेंट थे, जो स्टूडेंट हैं, उनको अगर किसी तरह से क्षति पहुंची है, जो मॉब फ्रेंजी, नोट कर लीजिए, मॉब फ्रेंजी अनलॉफुल असेंबली में एक आदमी के साथ वार्तालाप, एक आदमी के साथ वन टू वन बात नहीं कर सकती पुलिस, एक साथ ही उसको एक्शन लेना पड़ता है डिस्पर्स करने के लिए। तो इसलिए अगर उनको कोई कोलेट्रल डैमेज हुआ हो, उन बच्चों के प्रति भी, हम उनके पेरेंट्स की उम्र के हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ भी है, और आने वाली ये हमारी जो 60% की जनरेशन है, इनकी अपना आवाज उठाएं, लेकिन संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। ओवरफ्लो ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आइए आप, अगर बैरिकेड नहीं क्रॉस होता तो बगैर परमिशन के वो लोग कर ही रहे थे भाई, प्रदर्शन तो चल ही रहा था ना। और कई लोगों ने कई धरने दिए हैं पीएम हाउस के बाहर, उन्होंने कौन से परमिशन ले लिए? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर मैं, मेरे लिए कानून नहीं है, दूसरे के लिए कानून है, ये नहीं होना चाहिए। कानून हमारे लिए भी है, पुलिसकर्मियों के लिए और सिविलियन के लिए भी है, सिटीजन्स के लिए भी है, कानून सबके लिए है। कानून का इकबाल देश में होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।
0: ये जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, ब्रजलाल साहब हमारे साथ बैठे हैं, डीजी रहे उत्तर प्रदेश के, ये जो फील्ड में काम कर रहा होता है, ग्राउंड में, और एक ऑफिस में बैठकर एयर कंडीशन में या बड़े बड़े ऑफिस में जाकर काम करना, ब्यूरोक्रेट्स होना, वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर अलग है। ये जो मेरे अधिकारी मेरे साथ बैठे हुए, ये वो ऑफिसर है जिन्होंने जमीन पर काम किया है। एक ऑफिसर सीनियर पोजीशन में होना, ब्यूरोक्रेट होना अलग बात है, परंतु जो ग्राउंड में परेशानियां पुलिस को झेलनी पड़ती है, एक सिपाही को झेलनी पड़ती है, एक आईपीएस ऑफिसर को, एक कमिश्नर को झेलनी पड़ती है, उसी को पता होता है कि कितना ही चैलेंजिंग जॉब है। तो आप ये जो ग्राउंड के ऑफिसर थे, मैं इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं कि वो ये बातें बताएंगे जो ग्राउंड पर हमारी परेशानियां होती है, जो हम लोगों ने झेली हुई है, मार खाई हुई है, तमाम चीजें पुलिस के सामने होती है, कोर्ट कचहरी अदालत बहुत सारे कानून और तमाम की निगाह पुलिस के ऊपर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जमीन से जुड़े हुए पठानिया साहब है, राजेंद्र पठानिया, बहुत लंबे समय तक दिल्ली पुलिस की सेवाएं की है, 40 साल तक सेवाएं की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पठानिया साहब, और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि संक्षेप में 5-5 मिनट रखें और बिरला साहब को भी पानी बैठ जाते हैं। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी तो आप जवान हो, नहीं रिटायर तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, इससे भी वाले हो जैन जी वाले हो, यंग जैन जी।
6: अरे माइक में रखवा दो सर,
3: We have got you these details. In fact, live news conference that is underway. This is being led by retired police officials who are pouring out.
7: 1985 में मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और सारी उम्र मेरी दिल्ली पुलिस में ही नौकरी करते निकल गई। करीबन 6 जगह मैं एसटीओ रहा था और 3 ACP सब डिवीजन का भी मुझे मौका मिला। मैं बातें रिपीट नहीं करना चाह रहा, सब आपके सामने है। आपके मंच के इस माध्यम से मैं पूरे अपने जवानों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली पुलिस के जवान छुई मुई या मिट्टी के बने हुए नहीं है, वो मजबूती के साथ खड़े हैं और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी कहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। और जो हमारी यंग जनरेशन है इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की बातें करें जिससे भारत माता कि एकता मजबूत हो, भारत माँ का गौरव बढ़े, मान बढ़े। पूरे वर्ल्ड में हमारी क्या छिनछनेदार होती अगर किसी तरह से प्रदर्शनकारी संसद में घुस जाते, पूरा वर्ल्ड देखता हमें और हमारी डेमोक्रेसी पे हंसते सारे लोग। और मैं आपके माध्यम से जो हमारी यंग जनरेशन है इनके माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम देखें तो सही आपकी बच्चे जा कहां रहे हैं, कहीं वो पथ से भटक तो नहीं गए, और उनको समझाएं बुझाएं। हम बच्चों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जनरेशन ठीक किया, वो सवाल पूछना सरकार से जायज है, लेकिन इस प्रकार की भद्दी भद्दी गालियां बच्चियां दे रही हैं। हमारे बच्चों से भी कम उम्र की बच्चियां वहां पूरी फोर्स खड़ी है, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, किस तरह से उन्होंने मीडिया का मिसयूज किया और इस तरह की हरकतों से बचे, यही मुझे आप लोगों के माध्यम से कहना था। नमस्कार, जय हिंद।
0: धन्यवाद पठानिया साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर है तिलक राज मोंगिया जी, इन्होंने बहुत लंबे समय तक रेलवे की नौकरी करी है पुलिस हेडक्वार्टर में।
3: बाय रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हु आर स्पीकिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन द 20th ऑफ जुलाई एट अ टाइम व्हेन द ऑपोजिशन इज पॉइंटिंग फिंगर्स एट द पुलिस, स्पेशली क्वेश्चंस ओवर पुलिस एक्सेसेस दैट वर यूज्ड ऑन स्टूडेंट्स ऑन 20th ऑफ जुलाई ड्यूरिंग दैट प्रोटेस्ट। हियर दीज आर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स पुटिंग आउट डिटेल्स ऑफ व्हाट happened as part of that protest, saying that the law is as much for them as it is for the protection of the entire country, saying that as far as protesters are concerned, they did not pay heed to the warnings that were issued to them time and again. The cops did not provoke or take the first action. It is only when the law and order situation took a hit, that they had to act against the protesters. Also saying that as far as remarks on pellet gun use is being made, those are misleading remarks. But the cops primarily saying that such situations are very difficult to handle, as much for the cops to ensure that law and order stays under control, and the other side must equally cooperate, because it is as much about their lives as it is about everyone else's lives. Earlier this morning, we saw that news conference that was led by the kin of the injured cops, who had spoken about how they are equally at the...
6: आप देखो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर बैठे हुए पीएम बैठे हुए उन तक को डरा दी उनसे बोला ही नहीं जा रहा क्योंकि राहुल गांधी पीछे पड़ा हुआ है पता नहीं क्या बोल दे कब बोल दे किसको बोल दे
8: हाँ पॉलिटिकल
6: इतना नहीं अभी जहां तक रहा फोर्स के साथ है अभी डीजी सीआरपीएफ साहब ने भी कहा कि हम फोर्स के साथ हैं जिन हालात में फोर्स ने प्रोटेस्टर का मुकाबला किया है इसके अलावा कोई चारा नहीं था अभी भी कह रहे हैं हम कि कोई चारा नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने फैसले लिए हैं हम उससे पूरे सहमत हैं 100% सहमत है एक्सेप्ट कि बदमाश के खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए हर हालत में होना चाहिए वो अगर ये बदमाश नहीं होते तो ये सिचुएशन पैदा नहीं होती ये सिचुएशन बिगाड़ने वाले 3000 बदमाश थे 2873 सबको जो है नंबर याद हो गया बच्चे को भी पता है आप कि कितने नंबर थे बिना बदमाश के स्टूडेंट का हौसला नहीं पड़ सकता कि पुलिस से टकराव है और जो एक बार जेल में हुआ है वो पुलिस से बहुत ऊपर उठ जाता है और इतना डर के पुलिस भी किनारे पे खड़ी थी पुलिस की भी हिम्मत नहीं थी और मीडिया ने एक तरफा दिखाया देखो कि डंडा मार रहे हैं और वो जो 100 बंदे स्टूडेंट्स हैं प्रोटेस्टर हैं वो एक सिपाही को पीछे भाग रहे हैं और उसको पीट रहे हैं उसका नहीं दिखा रहे ये तो और निकल के आ रहा है शुरू शुरू में यही था तो मेरे आपसे प्रार्थना है कि हम जो गवर्नमेंट कर रही है हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसको वेलकम करते हैं थैंक यू वेरी मच
0: धन्यवाद मंगल सर अभी दंडला साहब से पहले मेरे साथी नियमपाल जी हैं काफी बीमार चल रहे थे और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं परंतु इनका कहना था कि मैं चाहे 2 मिनट के लिए मुझे बोलने का मौका दिया जाए मैं अपनी बात जरूर रखना चाहता हूं क्योंकि लंबे समय तक जब सेवाएं करता है पुलिस के अंदर आज भी हम लोग पेंशन लेते हैं हमारी जो पहचान है पुलिस की पहचान है साहब को तो साहब तो एमपी है राष्ट्रवाद के एमपी भी है हमारी पहचान यही है कि हम दिल्ली पुलिस से सिपाही रिटायर है एसीपी रिटायर है इंस्पेक्टर रिटायर है हमारे जीवन पर्यंत ये निशानी रहेगी तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं मैं नियमपाल साहब से रिक्वेस्ट करूँ 2 शब्द जरूर बोले इस मौके पर
9: धन्यवाद जी नमस्कार साथियों दर्जा साहब नमस्कार हमारे पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश वर्तमान में राज्यसभा सांसद जो हमारे इस प्रोग्राम में आए साहब आपके आने से हमारे महाशक्ति महासंघ को काफी शक्ति मिली है काफी बल मिला है क्योंकि मैं दिल्ली महासंघ का मैं भी प्रेसिडेंट इन्होंने बना रखा हूँ साहब तो रोजाना डिबेट में बिजी रहते हैं तो कुछ काम मैं भी संभालता हूँ 2 शब्द बोलना है कानून ने अधिकार दे रखा है हमको या तो कानून को बदल दो कानून भी आप लोगों को बनाए हुए हैं फिर उस पर सवाल क्यों आपने भी देखा है कितना बल प्रयोग हुआ उसका चौथाई बल प्रयोग भी नहीं हो पाया जिस तरह का उनका एक्शन था पॉलिटिशियन तो अपने राजनीतिक खेल खेलने के लिए यहाँ आई रहे थे कौन कौन था मैं नाम नहीं लेना चाहता सब आपको मालूम है कि किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी अगर वो पार्लियामेंट में घुस जाते जो कि विपक्ष भी यही चाह रहा था कि ये घुसे पूरे हिंदुस्तान में रह सकता फैले अगर शेर 2 कदम पीछे हटता है
3: It's presenting its side as this news conference is led by retired police officials who are really saying how difficult such situations can get. They come in the defense of those injured cops where all the questions that are being asked to them as to why police excesses were used against those students at a time when the opposition continues to raise these questions. But here the cops are really speaking for how difficult such situations are to handle and how the law is as much for them them as it is for the entire country. It is as much about their protection. Such situations that can be very difficult because it is about protecting one and all and themselves equally. And that is what led to what happened on the 20th of July, where the retired cops were also pointing out that while it was supposed to be a student-led protest, but there were a lot of anti-social elements. And most importantly, how important instructions were not followed. The police were sitting on their side, but it is only when it became a situation of law and order, it became a situation of security concerns, and the protesters who crossed through the barricades came very close to the parliament complex is when the police had to take action. Now, those are the retired cops who are speaking for how they have to literally weigh every situation that is at hand, because they have to ensure that they don't hurt the innocent, but at the same time, law and order does not take a hit. Now, let's understand, earlier this morning, there was a news conference that was also led by the kin of the injured cops, who also went on to say that it is as much about their families as it is about the rest of the country. So here we see the police force stand up in unity to say that what transpired on the 20th of July was not an easy one to handle. Most importantly, it was about the huge number of protesters who had turned up on the ground. But these were not only students, or this was not just restricted to a peaceful protest. This had a lot of anti-social elements who became part of that protest. Remember, so far, according to the probe, the police has already identified about more than 2,800 of those protesters who had past criminal records, and they were seen at the protest pelting stones at the cops, clearly provoking the cops, and that is what led to the action. So there you see both sides of the story now, where the police force is standing in unison to say that the aim or the motive was never to hurt anyone who was innocent, but also the situation turned such and it escalated in a manner that they had to also see their own protection. And Assam battling devastating floods, social media is flooded with donation appeals, but can you trust them? An India Today OSINT investigation puts Instagram fundraisers under the scanner and uncovers alarming red flags that every donor needs to know before sending any money across. Take a look before you donate.
10: Assam is drowning. As lakhs battle one of the worst floods in years, another flood is raising alarm. A flood of suspicious online donation appeals. An India Today OSINT investigation has now uncovered what could be a massive credibility crisis behind Instagram flood fundraisers. 40 Instagram accounts were put under the scanner. The question was simple. Can you trust them with your money? The answer is alarming. 35 out of 40 triggered every major red flag. The accounts were checked on three basic parameters. Who are they? Can they be verified? And where is your money really going? Most failed all three. 38 accounts were created only this month. Many had barely 20 to 30 followers. Yet some reels mysteriously clocked hundreds of views. 39 asked people to transfer donations to personal UPI IDs, not registered charities or recognized relief organizations. And 36 accounts either had no working contact number or could not be reached at all. The investigation also exposed fake relief claims. One account passed off a Jantar Mantar food distribution video as a Assam flood relief. A reverse video search revealed the truth. Others reposted old or stolen videos to appear genuine. The floods are real. The need is real. But every appeal may not be. Before you donate, verify the source. Check the credentials. Let your donation reach flood victims, not fraudsters. With OSINT inputs, Bureau Report, India Today.
3: And we now get you these pictures from Assam, where a man was seen wading through neck-deep floodwaters to save a drowning cow. The man risked his own life to save that cow from drowning. As Assam continues to battle one of its worst flood crises in years, every contribution can make a difference. The India Today Group's Care Today Fund that is once again supporting relief efforts for flood-affected families in the state. So if you would like to help, you can donate through the verified Care Today Fund account. The bank details are on your screens. Your support can help. You can donate through the verified Care Today Fund account. The bank details are on your screens. Your support can help bring. That's all that we can pack for you in this edition. On The Other South, our special segment, So South, where you get to watch all that is making news down south. Do stay tuned.
11: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
12: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
14: Is giving me investment tips.
15: Sure, it's only for you.
16: Oh.
14: Pay attention. From afar, it felt so true. A famous face giving advice with a smile. But looking closer, I saw I was being trapped by a fake video slide. SEBI and NSE advice. In any video, focus on slow eyelashes and faulty lip sync. Believe and trust only on authorized sources. Wah!
17: Samajkar, investikar. NSE Dwara Niveshakon ke hit mein jari.
18: If you want to scale the media heights, we will teach you the ropes. There is no peak in journalism that our mentors haven't scaled. So look no further, join our postgraduate diploma programs and gain guaranteed internship and proven placement record with top media houses and companies. For more information, visit IndiaTodayMediaInstitute.in or call 95600-65465.
19: People poured out on the streets, and the government's response made things worse.
20: And it was becoming a citizen-first democracy. Rajiv Goswami in flames, and I think that again encapsulated the Mandel agitation.
21: आप ये बिल को लाना चाहते हैं हमारा जन लोकपाल बिल तो पार्लियामेंट में इस बल के बिल के बारे में चर्चा शुरू कर दो।
22: There was a huge outpouring of anger against women's security.
23: कौन है? बेचारों जो हमारे घर में बात करते हैं, कुछ तो बताइए।

0: And breaking news coming in. According to sources, the Lok Sabha Secretariat has taken a stern view of Pappu Yadav's antics regarding the alleged theft of offerings. Such conduct cannot be permitted within the Parliament House complex, where the Speaker has also objected to Pappu Yadav's behaviour. Under Lok Sabha Secretariat guidelines, protests are not permitted at the Makar Dwar. There is a proposal to enforce this strictly, is what we are learning. Listen in.
1: चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, साउथ का मंदिर हो, सब आस्था के साथ खेलवाड़ हुआ है। फिर ऑडिट क्यों नहीं, आरटीआई क्यों नहीं, एसआईटी के द्वारा जांच क्यों? छोटी मछली को सामने लाके बड़ी मछली को क्यों बचा रहे हो? पूरी कमेटी को क्यों बचा रहे हो? पैसा गया कहाँ? जिन लोगों को फंसा रहे हो जेल में फांसी दो, और जो लोग पैसा पूरा खाएं उनका नाम लो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से जांच कराओ। तो जो आज आहत है हिंदुस्तान के सनातनी, उसके लिए सारे विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी, इन लोगों के नेतृत्व में आज पूरे हिंदुस्तान के चंदा चोर के खिलाफ यह एक प्रतीक है।
0: And there you see how Pappu Yadav raised the Chanda Chori issue and the sort of antics he resorted to as MPs outside Parliament at the Makar Dwar staged this protest. The opposition continues to question the centre over the donation theft at the Ram Mandir. But this certainly has raised a lot of eyebrows, and sources say that action will certainly be taken. Moving on, families of cops who were injured in the students' protest violence have slammed protesters. Addressing the media in the national capital, the kin of the injured cops alleged that protesters attacked cops and pelted stones at them. They added that rowdies, criminals and antisocial elements were part of the protest, leaving several cops severely injured. They shared videos from July 20 that showed protesters beating cops, police vehicles getting vandalized, stones being pelted at cops and barricades being breached. Now, according to the police, 118 police personnel were injured in the violence. Around 60 to 65 protesters also sustained injuries. Around 15 to 20 vehicles were damaged in the violence. Meanwhile, CJP spokesperson Saurav Das said that antisocial elements were allegedly planted by the BJP and RSS to cause trouble, adding that the government should compensate all those affected.
2: जंतर मंदिर में जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे, जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे एंड माय फादर डिडंट डिजर्व दिस.
3: पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है. जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतने सारी सीरियस इंजरीज ली हैं. आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है. उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के बारे में स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है. उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है.
4: मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए. क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है. ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ हो रही है. जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी. प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था, वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे. जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था. जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते.
3: माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट. ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड. रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं. उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर. दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM. ही वाज अनकॉन्शियस एट द आरएमएल हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 आवर्स. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी. वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी.
5: अगर मॉब फ्रेंजी हो गई, आप प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आपने 163 की वार्निंग को कुछ नहीं समझा, आपको बोला कि मजमा खिलाफ कानून आपका डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आपने ये किया, तो फिर पुलिस के पास क्या साधन है? या तो पार्लियामेंट में उनको घुसने देते तो इससे ज्यादा बड़ी घटना घटती. इससे बड़ी घटना घटती गोली चलानी ही पड़ती और वो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में अगर पुलिस अफसर की जान को खतरा है, प्रोपोर्शनेट थ्रेट है, तो वो कोई भी एक्शन वाजिब होगा, मौके पे लेगा. वहां पर ना गवर्नर साहब, ना सीएम, ना होम मिनिस्टर, मौके का सीनियर अफसर या मौके का अफसर उसको डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी जान और पब्लिक की जान और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे पार्लियामेंटेरियन है, उनको कैसे बचाना है.
6: जिनको चोट लगी है गलत बात है, उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सरकार को भी उनको फ्री का ट्रीटमेंट देना चाहिए. एंड वायलेंस का कहीं जगह नहीं है किसी भी प्रोटेस्ट में, हमारे आंदोलन में भी नहीं है. कुछ असामाजिक तत्व बीजेपी आरएसएस के थ्रू घुसाए गए थे हमारे प्रोटेस्ट में जिन्होंने ये सारा प्रॉब्लम किया कुछ कुछ जगहों में वायलेंस करके. लेकिन उनको भी मैं बोलूंगा कि गेट वेल सून. हमारे भी जो प्रोटेस्टर्स है वो उनको भी बोलूंगा गेट वेल सून. ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार को मुआवजा देना चाहिए ऐसे सारे प्रोटेस्टर्स को एंड ऐसे सारे पुलिस कर्मियों जो घायल हुए इनके वजह से।
0: And when India Today questioned Rahul Gandhi on the families of injured police personnel briefing the media, the leader of opposition seemed irked and retorted, "Are you from the BJP?" We're getting you this full interaction.
7: राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए।
8: बीजेपी का हो गया?
7: नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की, तो परिवार वाले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर?
9: तरीका नहीं
7: सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे।
0: Today again questioned Rahul Gandhi, asking him to comment on the injured cops. He then chose to evade our questions.
7: राहुल जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठाइए सर।
10: जो पुलिस वाले बोले वो तो
7: पुलिस एक बार बता दीजिए।
10: पुलिस वाले भी घायल हुए राहुल जी, जो मार्च हुआ था 20 जुलाई को। आप चुप हैं, आप
0: Take this to my colleague Anshul, now joining us live on the broadcast. Anshul, our job is to ask questions, and we've been showing every side of the story. Fact is that when it comes to the cops and their families, they have also been crying for their loved ones. But here, LOP, while he raises his voice for the students, the moment it comes to being questioned on the police personnel, he tells our colleague Piyush Mishra, "Are you from the BJP?"
11: Oh, well, yes, that is a statement that has come in from none other than the LOP of the country. And over the past few days, there have been several statements that have been made inside the parliament, which actually seems to be very factless when you compare that with as to what is the SOP that is followed. For example, the usage of pellet guns is something that is mandated in the law. If at all, the initial four barricades or initial steps to control the crowd fails, then yes, there is the legal use of pellet guns is something that is allowed, and this could actually happen on the orders that are given by the DCP or a similar rank officer who is present on ground zero. This specifically happens in the commissionerate. There is no order per se that is required either from the lieutenant governor or from the side of the home minister, as it's mandated in the law itself. Apart from this, there are statements that have been made from inside the parliament itself, where it was claimed that there were sticks with nails on them, which is yet again a very factless statement that has been made. There were no such sticks that were used from the side of the Delhi police, and this is something that is not according to the law as well. But today, a very pertinent question that was raised by the family members in that press conference that happened just a few hours ago, they asked this one pertinent question, that the police officers got injured trying to save the parliament from the protesters, and now the Indian parliament itself is going ahead and calling them criminals, the police officers criminals. So they are actually very, very hurt. They are hoping that they would get the justice that they deserve, and that is the reason why a petition has also been moved inside the within the Supreme Court as well, in which it has been stated that it is mandatory for the court to make sure that justice is given to these police officers, because the person behind that uniform is also a citizen of India.
0: Exactly.
11: And he also has the exact amount, he also has the similar rights to that of the protesters as well of getting justice. Will justice be given or not? That is something that remains to be seen, but the manner in which these cases have been taken back,
0: right,
11: this is something that has disheartened not only the families but also the officers who were involved in controlling the crowd on the 20th of July.
0: Absolutely, Anshul, and we leave it at that. Many thanks for getting us those details. And the latest coming in, Bengal STF has arrested a man with suspected park terror links. Bengal STF has arrested this person from East Burdwan district over suspected links to Pakistan-based terror outfits. Hameem Mondal is his name. He's a resident of Howrah. He was arrested from Burdwan town on Friday morning. This on the suspicion of terror links. Police suspect that he could be involved in tracking the movements of key political leaders in Bengal, including Chief Minister. Sources also tell India Today that he was living in Howrah district. He was working there as a tailor and he was involved in stitching uniform. Recently, after the eviction notice in certain areas in Pilkhana, he had moved to Burdwan. Police suspect that he could be involved in tracking movements of key political leaders in Bengal that also include Chief Minister of Bengal, Shivendu Adhikari. We're trying to get you further details on this man. He has been taken in by the STF, the Bengal STF, who had been tracking every movement of this man. And this is under the suspicion that this man has Pak terror links. They've arrested him from East Burdwan district. And his name is Hamim Mandal. He was a resident of Howrah, but he was arrested from Burdwan town on Friday. He was picked up on the suspicion that he had terror links with Pakistan. The police suspect that he could be involved in tracking the movements of key political leaders in Bengal, including Chief Minister Shubhendu Adhikari, and he could be passing on this information to Pakistan terror groups. Now, according to sources, he was living in Howrah district. He was working there as a tailor and he was involved in stitching uniform. But very recently, after the eviction notice in certain areas of Pilkhana, he moved to Burdwan. Let me take this to my colleague Anupam Mishra joining us on the broadcast. Anupam, what more details do we have on this man and what is the Bengal STF saying?
8: Well, you know, Bengal STF sources are saying that he was trying to hold a plot of attacking Shubhendu Adhikari, and a lot of other things are saying, but we have to get to the official version of the STF right now. What we know that this man has been arrested by STF Bengal, and he was staying in a housing complex. That is what we are getting the information. And this person is from East Burdwan district, and he was arrested over suspected links to Pakistan-based terror outfit. That is what we have been told by the sources of STF. Hamim Mandal, he's a resident of Howrah, and he was arrested from Burdwan town today morning. He was arrested and on suspicion of terror links. So according to police sources, Mandal has been under surveillance for past 4 to 5 days and has been shadowed for months while staying in Burdwan. So a lot of other information are also expecting other information and how he was planning and what was the exact planning of

महंगा है तो अच्छा ही होगा क्या? आप भी ये सोचकर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल खरीद रहे हैं? चलिए इस वीडियो में फैक्ट चेक करते हैं, इज इट रियली वर्थ योर मनी। ये हमारी पार्ट 3 ऑफ द सीरीज है जिसमें हम ऑयल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए हमने बात करी है डॉक्टर प्राची जैन से, शी इज द HOD ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी इन वैशाली। सो देखिए, ऑन पेपर ये दोनों ही वर्ल्ड क्लास सोर्सेज ऑफ MUFA हैं। MUFA अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, अपने आप को एजुकेट करिए जिससे कोई लेबलिंग आपको बेवकूफ ना बना सके। बट बैक टू दीज ऑयल्स, दोनों ही वर्ल्ड क्लास सोर्सेज हैं MUFA के, पर दोनों का ही जो हीट टेम्परेचर है और उनका यूजेज जो है वो बहुत अलग है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। पहले चलिए बात करते हैं इनकी यूटिलिटी और स्मोक पॉइंट की। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है, दिस इज अ वेरी फ्रेजाइल ऑयल। मतलब जैसे ही आप इसे 190 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर लेकर जाएंगे तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। जितना भी इसके अंदर अच्छे गुण है वो सब हवा में धुआं धुआं हो जाएंगे। एवोकाडो ऑयल का स्मोक पॉइंट बेटर है 270 डिग्री सेल्सियस, जो इसे हीट टॉलरेंट बनाता है। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में EVO मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डोमिनेट्स ऑन पॉलीफेनॉल्स। इसका मतलब है इसके अंदर एक बहुत पावरफुल प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जितने प्लाक बिल्टअप होता है उसको एक्चुअली क्लियर करने में हेल्प करता है, तो इट्स एक्चुअली गुड। एवोकाडो ऑयल ऑन द अदर हैंड ऐसा कोई काम नहीं करता है। अब समझते हैं ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का रेशियो जो सारे ऑयल्स में देखना चाहिए। इन दोनों ही ऑयल्स में ओमेगा 6 ज्यादा है, ओमेगा 3 कम है। इनफैक्ट जो रेशियो होना चाहिए एटलीस्ट 2:1 और 4:1, वो इसके रेशियो में करीब 12:1 है। तो बहुत ही ऑन द हायर साइड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों खाने नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको ओमेगा 3 के सोर्सेज जो है अपने अलग अलग तरीकों से लेने हैं, अपनी डाइट में उसे इनकॉर्पोरेट करना है। तो अब इसके फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं, और पहली बार हमारे वर्डिक्ट में एक टाई है, बिकॉज इन दोनों ऑयल्स के बीच में चूज करना बहुत डिफिकल्ट है। ऑल्सो दोनों के यूजेस बहुत अलग अलग हैं। अगर आप घर में बहुत सारी सैलड्स बनाते हैं जिसमें आप ऑयल्स यूज करते हैं या ड्रेसिंग्स के लिए ऑयल यूज करते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड। आप उसे ड्रिजल करिए, उसके अंदर के जो अच्छे तत्व हैं वो आपके फूड में रह जाएंगे। एवोकाडो ऑयल को लोग यूज करते हैं हाई हीट कुकिंग में, लेकिन मार्केट में बहुत सारे डूब्स चल रहे हैं, किसी भी चीप ब्रांड के साथ मत जाएं। ऑलवेज चेक द बैक लेबल वेरी केयरफुली, एंड एज वी ऑलवेज से, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो जो आप ऑयल यूज कर रहे हैं उसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर जानकारी हासिल करें। बट आई एम श्योर ये तीनों हमारी जो सीरीज है वो खत्म हो गई, और आपको लग रहा है क्या क्या सोचना पड़ेगा, तो हम एक पार्ट 4 बना रहे हैं जिसमें हम सारे ऑयल्स का आपको रैंकिंग देंगे। विच ऑयल शुड यू यूज, हाउ मच शुड यू यूज, ऑल ऑफ दैट विल बी क्लियर। सी यू इन पार्ट 4।

Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
1: Lee looks for someone, finds the right someone.
0: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
2: Because people who all watch games, they hear the voice.
0: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: People poured out on the streets and the government's response made things worse.
6: And it was becoming a citizen first democracy. Rajiv Goswami in flames, and I think that again encapsulated the Mandela agitation.
7: आप ये बिल को लाना चाहते हैं, हमारा जन लोकपाल बिल, तो पार्लियामेंट में इस बल्क के बिल के बारे में चर्चा शुरू कर दो।
8: There
6: was a huge outpouring of anger against women's security.
9: कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन

0: Our top focus. A young woman's abusive remarks against the Prime Minister have triggered a zero FIR, political outrage and larger constitutional debate as well. Where does free speech end? How absolute is freedom of speech? Can offensive language alone invite criminal action? Here's the full report.
1: ...25-year-old Ruchika Singh from Noida is at the centre of a controversy. A zero FIR has been filed after she allegedly abused Prime Minister Narendra Modi during a students' protest on July 23rd. The FIR accuses her of insulting the dignity of the PMO, spreading disharmony, disturbing public peace and defamation. The case, filed on the basis of a complaint by Smriti Singh, has now been transferred to Delhi Police for investigation.
2: Pradhan Mantri ke khilaf is tarah ki abhadra bhasha ka prayog karna aur unke sath ek aur mahila netri ka bhi naam liya gaya hai jo ki shobha nahi de raha hai. Ek mahila ke liye is tarah ke gande shabdon ka istemal karna bilkul chhamme nahi hai. Aise logon ko punish karna zaruri hai taki aage is tarah ki bhasha ka istemal karne se pehle 10 baar wo soche.
1: CJP spokesperson Saurabh Das condemned the language but questioned the police action.
3: कि अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे हैरासमेंट करोगे वो बिल्कुल सही बात नहीं है.
1: The opposition has called it an attempt to silence protest voices.
4: लोगों पर जिन्होंने आंदोलन को सपोर्ट किया FIR करवा रहे हैं उनको बुक किया जा रहा हाउंड किया जा रहा जो सर्वथा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और अग्रीमेंट के खिलाफ.
1: सम बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग एमपी कंगना रनौत हैव हिट आउट एट जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स ओवर देयर लैंग्वेज बट पॉलिटिक्स हैज ऑफन अप्लाइड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. बीजेपी एमपी रमेश भिदुरी हैज मेड कम्युनल रिमार्क्स इनसाइड पार्लियामेंट अर्लियर. But the matter went to the Privileges Committee, and no criminal case followed because parliamentary privilege protects speeches inside the house. Then there is Raja Singh, a former BJP leader